0: वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की,
0: वाहेगुरु जी की फतेह। खुशियां दे।

सैदा सैदा बल्ले वारे तो दिया गे अरे दास हमारी वाग्री तो दिया गे

बस सदगंज सरबस्त बख्शीद में के हाफज करो दीद ए आफतम बजाए दिगर दिल न जो तापतम के दीदार बख्शन अगर ओमरा के सदगंज सरबस्त।

भूत बन चारि छित छाना सबे दूता धारी पौन के आहारि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच के बडैया देत बकुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पब खानी नाहे असन प्रपंच मन भूलानियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया देत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मठ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन जारी लिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ टेरु को कन्हैया नाम कंस को बथैया।

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस्ते तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए हुए बितय है। मोन दी मदार कते असुनी कुमार कते अंसा अवतार कते काल बस भय है। पीरे ओ पिकंबर कते गने ना परत एते भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट फेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल जोप काढ़त अनेक दंड सोत न दंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रोग जो बेडारो रहे उर्द मुख मन तेना मूड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भाव जगदीश को शीस पटकत जाके कान में खजूरा धस मूंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन गस भेंट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाय ठंड सदा वन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठौर वास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान बिन हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक सौगी कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लायदारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर औगत अनेक दा पुकार ही कहा भयो जप कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाकू ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन के उस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो वे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो वे पायत अजाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो वे नारायण पाइयत अनल आकाश।

न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर बूरत है, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केतक प्रत।

तेना सत्र न मित्र सभूते भविखे भवान यचित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभं भूतं गफेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनीय छयादद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भयनिर्विखादं अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न गायंग न नेहंग न गेहंग न बर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न वेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे

कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्याधर मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ठ पन्नया कहूँ वेद विद्या।

पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग हूँ जंत्र रीतंग हूँ सहस्र धारंग हूँ ओम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी।

आस देव हरता सनाद आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय गरम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योत्पान।

ಸಿದ್ಧಕೋಸ ರೂಪ
रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है से बड़ा को बड़ा है के बुद्ध हम सब घर है देवान को देव बन के बन है देव देव को देव बन के शुद्ध धर्म को चार देव है देव जान को पछिया है मान को दिवई है को बाल को पढ़ाई जान को काम भी को कर है को पढ़ी को अपने ग्रंथ में ना खंड रण को हंडे जो मन जीवन को मंडल के पुस्त है ना नर है को मंडल के पुस्त है ना नर है विश्व को वर्ण है या पदा को हरण है सबको मुख रंग है हर दे जग प्रकाश है को पाई है पार जल पार में को पार जल में पार जल पार को विचार पर को देव सी जन में चार सब ठिंगला है माल का मैं बस हल पिता को पूर्व में ना पार पास है सब देव रंग को है देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को देव रंग को राजन के राजा महासाज होंगे साज राजा जो

श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल श्री अकाल

जा सकता मन होई, तू करता करण में नाही, जा करे ना होई। बिलहारी कुछ दिवसिया तुरंत ना जाए लिखे रहा, जात महजोत जोत महजा का अगल कला भरपूर है, तू सच्चा साहेब सब सवाल हो जिनकी तिसो पार पाया। कहो नानक करते

0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: प्रभ के सिमरन दरगह मानी,
0: प्रभ के सिमरन होए सुफला,
1: प्रभ के सिमरन सुफल फला।

0: सिमरन नानी जम त्रासा,
1: प्रभ का सिमरन
0: मन की मल जाए, प्रभ जी बसे साध की रचना,
1: दासन दसना
0: प्रभ का सिमरह से तन बनते,
1: प्रभ का
0: सिमरन।

0: जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, जहाँ माँ पे आन दूध जम दल है,
1: जय मुश्किल हो वे अत पारी, अनेक बहुचरण करत नहीं तरह, गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
2: नानक पावो सुख घनेरे,
1: सगल सृष्टि को राजा दुखिया,
2: हर का नाम जपत होय सुखिया,
1: लाख करोरी बंद न परे,
2: हर का नाम जपत निस्तरा,
1: अनेक माया रंग तिख न बुझावे,
2: हर का नाम जपत अगावे,
1: जय मां रखे जात इकेला,
2: हर नाम संबोध वेला,
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए,
2: नान कर्म परम पद गाइए,
1: छूटत नहीं कोट लख बाही,
0: नाम जपते है पार पराही,
1: अनक बिगंजे आए संघारे,
0: हर का नाम तत्काल उधारे,
1: अनेक जोन जन्मे मर

0: तेरा कौन सियानू
1: नाम ते नाल पछा
0: जय महा प्यान तपत बहु काम
2: हर के नाम की तुम ऊपर छा
0: जय त्रिखा मन तुझा करके
2: नानक हर हर अमृत
0: भरके भगत जना की बर्तन नाम
3: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की।

0: पद दुख जाए,
1: नानक बोले सहज सुभाए,
0: चार पदारथ जे को मांगे,
1: साज नानी सेवा लागे,
0: जे को अपना दुख मिटावे,
1: नाम हृदय सतावे,
0: जे को अपनी शोभा लोरे,
1: साज संग होमे छोरे,
0: जे को जन्म मरण ते डरे,
1: साज नानी चरणी परे,
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा,
1: नानक ताके बल बल जासा,
0: सगल पुरख मह पुरख प्रधान,
1: साज संग जाका मिटे अभिमान,
0: आपस को जो जाने नीचा,
1: सो गणिए सकते ऊंचा,
0: जाका मन होए सगल की रीना,
1: हर हर नाम की कटकट जीना,
0: मन अपने ते बुरा मिटाना,
1: देखे सगल सृष्टि साजना,
0: सूप धूप जम समदृष्टेता,
1: नानक पाप नहीं लेपा,
0: निर्धन को धन तेरो नाव,
1: मिठावे को नाव तेरा थाओ,
0: निमाने को प्रप तेरो मान,
1: सगल बिटा को देवो दान,
0: करण करावन हार स्वामी,
1: सगल बिटा के अंतर जामी,
0: अपनी गत में जान हो आपे,
1: आपन संगा प्रभ राते,
0: तुम्हरी उस्तत तुम ते होए,
1: नानक अपने जान सोए,
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साज संग

0: हमारे प्यारे दूध
1: भर जो अपन भोजन सुख सुंदर
0: भया ऊपर साक्ष है
2: मुख व्यापो बैठ को दे
0: निर्गुण गुण कछु न बूझे
2: परमेश्वर देव जो नानक सिखे
0: प्रसाद धर ऊपर सुख बसे
2: सत प्राप्त मित बंदा संग हसे।

0: माटी संग्रचय
1: साचोर झूठ संमचय
0: जो चढ़ना सो स्थिर कर माने
1: जो भवन सो दूर प्राणे
0: जोर जाय तिसका श्रम करे
1: संग सहाय किस पर हरे
0: चंदन लेप उतारा धोए
1: गर्दभ पसंद संग होए

0: पुरुषो नाही चारा
1: सदा नमस्कारा
0: जाके मन लागा प्रभ मीठा
1: सर्व सुख ताहू मन बूठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व भोग नानक तन पाया
0: अगनत साहू अपनी दे रास अपनी अमान कछ भर ना साहो ले अपनी प्रतीत आप ही खोवे जिसकी बस्त

0: गोविंद सह मन पछतावे,
1: जो दिसे सो चालनहार,
0: बट रहो ते अंधकार,
1: बटाउ सो जो लावे
0: नेहा, हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,
0: कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया।

प्रसाद की शरण है। नानक जप जप जीपे हरते चले, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, लोक पावे, मिथ्या तन नहीं प्रोपकारा।

0: अभिहाय
1: मेघ बिना जु खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
1: जु कृपन के निरादत दाम
0: तन तन ते जन जय कट बसे हर नाम
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कछ अवर न कमावत।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्ले
1: जैसे जल मह कमल ले
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष
1: जैसे सूर सर्व का सोख
0: ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज कंका लागे तुल पवन
0: ज्ञानी के धीरजे
1: जो बसदा को खुद को चंदन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुण
1: नानक यूं पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल दे निर्मल
1: जैसे मैल लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे रूप गया आकाश
0: ज्ञानी के मित्र सत्र समान

0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न की माया ते हुए कर्म करत हो बैन करम वैष्णो का निर्मल तरम काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर हो बत कृपाल
0: आप दृढ़ नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम पावे।

0: जैसा सुवर्ण तैसी उस माटी,
1: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी,
0: ऐसा मान तैसा अभिमान,
1: ऐसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरताए साई जगत,
1: नानक ओ प्रकट कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाव,
1: जित जित कर राखे तैसा तिन्हाओ,
0: आपे करण करावन।

0: भवभेद अनेक प्रकार कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थवासी
1: कई कोट बन ब्रह्म उदासी
0: कई कोट वेद

नमः था पुथा पहारा हुक्मे धार अधर रहावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार कर कर देख अपनी वड़ियाई प्रभु भावे मानुख गत पावे प्रभु भावे बिन सास ते राखे भावे ता पतित उद्धार दुहा श्रिया का आप स्वामी जो भावे सो कार करावे कहो मानुख दे क्या हुए आवे इसके हाथ हुए ता सब किश ले अनजान दिखिया न रचे धर्मे भूला दह दिस धावे कर कृपा जिस अपनी

0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले
1: जो जन्म जो बनवंत
2: का जंत
1: आपस को कर मंत
2: कहावे
1: जिसके हृदय गरीबी बसावे।

0: के जड़ के छिनाए
1: अपन की जापी खाए
0: दुखी को अवतार रखन हाए
1: दाना सहायता नै पाए
0: दुखी अबिल लाए
1: संता
0: दुखी भूखा नहीं राजे
1: बाबा की तने द्रापे
0: संता दुखी चुटई के ला
1: जुआ टिके माई
0: संता दुखी धर्म तेरे

0: रब के सेवक दुख बिसारना
1: आपे मिले कृपा
0: गुरु का शब्द जप है निहाल
1: की सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करह बड़ भागा
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक दिन पुरख को उत्तम कर्मा
1: जो किछ करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा सह हर संग
1: सस बाय होवे सो
0: करना

0: तत्तत् विश्वरत्नमुनि
1: नारद
0: सुप्रभातिना तदा पाया
1: नीला कीमत ना है।

0: चरण सत सत परसनहार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखनहार,
1: नाम सत सत हरनहार,
0: आप सत सत सतधारी,
2: आपे गुण आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रभक्ता,
1: स्वर्ग सत सत जसवंता,
0: पूजन हार को सत सब होए,
1: मानस सत सत प्रभु सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जन

0: वस्त्र कटाई
1: आपा पंजरा कहना जाई
0: पूजन हार बे
1: नारायण मिले नाम बे
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक

0: नानक सो सेवक सास सास मारे
1: लंका परदा डाका
0: अपने सेवक की सर पर राखे
1: दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: सेवक की आपत राखे
0: बाकी गलत कोई ना लाखे
1: सेवक को ना पहुंचे
0: अपने सेवक पूछते उसे
1: जो अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दहते सकता।

0: ना मारे ना राखे अबर ना कोए सोच करे अरे प्राणी बार बार बार प्रभ जपिए गुरमुख पाया नाम रूप जो जन सोवत नाम बोलो जस जय बादिन भगत आतन के सो जाने महिमा कौन बखानो प्रभ से हजूरे जन अपना प्रभु पछाता
1: शरण
0: सरम सुख पावे
1: सब
0: पाप पावे

0: संतजना मिलकर विचार
1: एक से कर नाम आधा
0: और पाव सौ मीत विचार
1: सगर कमल कर नहाय
0: अलंकारं सो प्रभु सम्राट
1: गण कर नाम भगवान
0: योधन संचो हो वो भगवान सरा को मन माहे जैसा का चार कौन कौन धाव है
1: शोधन हर से बाते पाव है
0: जैसे सुख का उत्पा
1: चेमी जैसे
0: शोभा को करे पली कर

0: का प्रीत एक कोट एक आधार
1: नानक मांगे ना प्रसाद
0: की दृष्ट महासुख हुए
1: क्या
0: से जंत्र ताने
1: डोलाने
0: पर हे प्रेम रस।

0: अवेद अवेद समाया
1: उहा सह व्याप्त माया
0: अपस्तो अप है देव
1: का नहीं प्रवेश
0: एक एक एक भगवंत
1: कौन अचिंत्य सग अचिंता
0: अपन आप आपतिया
1: कह कौन कथा कौन
2: सुने
0: अवेद ऊच दे ऊचा
1: कौन अपस्तो अप है ऊचा
0: पंचा
1: का रहन है की नो विस्तार
0: भई कहावत
1: ओ नरक सो
2: सुरस पंचा

0: भावित कहीं ना जाए,
1: होता सोची पाए
0: परमान
1: प्रसाद नानक हो जाए। आप लाए गए कब सोए,
0: गुणवंत पदवान
1: जीवन मगर जिस का प्रवान
0: धन धन धन जनाया
1: सब जगत
0: का।

0: जगत बनायो
1: देवदत्त जन्म जायो
0: आज अंत एक अवतार
1: सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तसे ही को हमारी
1: सगल प्रजा जन आप सवारी
0: सेव कर को सेव गुण सुख दियो
1: सतरण को बल मोहन कियो
0: घट घट के अंतर की जान
1: भले फिरे की पीर पछाना
0: चीटी ते गुंचरे अस्थ

0: मूल राजा है बैठा श्रेष्ठ दिखाए
1: अचंभा
0: मेरी तुम करो
1: सिखो बार शिक्षण करो
0: उत्पाता
1: सबल मलेश्वर।

कर जाहि निहर हो वेद सिद्ध कर्म सब हुई एक बार जिन तुम्हें सुधारा जिनक नाम तिहारो कहा हड़ग के तुम्हें शरण तिहारी ठोर मोह हो सहाई कृपा करी हम पर जग माता सकल देह को हरता भय दयाला जो या।

कलगीधर जी पिता पंथ दे वाली अमृत के दाते शमशेर बहादुर जियो सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां जी दे आत्मक ज्योत सरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ।

समूह संगता प्रति बेनती है। थले निशान साहब के विखे गुरु का लंगर तैयार है जी। सारी संगत ने लंगर प्रशादा छके जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।

महल्ला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करें सर्व विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकम सच्चा तेरा मान सच्चा तेरा करण सच्चा निशान सच्चे तू दाखिल लख पर सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी से सच्चे साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच्चे अहिंसा सच्चे जो मर जमे सो काचन का

पहुंचे सब कोई। नचन चासे चले से रोए उड़ना जाए सिद्ध ना हो। नचन उदल मन का चा नानक जिन मन।

मनुत्रेतन करे हच्चा तो सचता पर जाने जा सच तेरे प्यार नाओ सुन मन रे सेता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जिग जाने जियो तरत काए सत किच दे करता पियो सचता पर जाने जा सिख सच्ची ले दया जाने जिक किच पुन दान करे सचता पर जाने जा आतंत्रित करे निवास सत गुण पुछ के बहरे करे निवास।

0: विचार मूर्ख पंडित एक मत जो संजय कर प्यार धर्म धर्म कर गावा वे मंगे मुखद्वार जति सदावे जुग न जाने छड़ पे करबार
1: सबको पूरा पे होए कठना कोई आखे पत परवाना पीछे पाईए ताना तो लिया चापे महला पहला
0: बहुत

अगे जातना जो रह अगे जीवन वै जिनके लिखे पत पवे चंगे से के पौरी तुरक।

0: दुखदार सुरोग भया जस पावा हो तुम करता करना में नाही जाओ करी ना हो बलहारी कुत तसया तेरा अंतना जाय लख्या रहा जात में जो जोत में जाता अकल कला पर फूरया तू सच्चा साहिब सिसवाले जिन की ती सब पार पया कहो नानक कर देखिया बाता जो किस करना सो कर महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे कतरे शब्दं सूर शब्द

0: नानक मेरे शरीर का एक तत्व जुग जुग लुटाई है ज्ञानी बुझता है। सतगुरु संतों का धर्मिक रथवा त्रेत्र जित का जोर रथवा द्वापर तप का सतग रथवा कलयुग सतगुरु का कूड़ रथवा महला पहला
1: साम कहे सतगुरु स्वामी सत में आचे सा

सिंबल अक्षर आए ना अतिरिक्त मुझ ओ जावे आस कर जाए निरसकेत पाल फिके फुल बग बके कामना में पक बिठत निगनान का गुण चंगिया ही आतात सब कुने में आपको पर कुने में ना को तार तारा जो तोलिए निवे

पट पुस्तक संध्या बादंग सिल पुजिस बगल समाधामुग जोट विभुगन सारंत्रे पाल त्यहाल विचारनं गलमला तलकलिलाटं दोय दोती बस्तु बाटं जे जान स्वर्म कर्म सपो

साहिब हुए दयाल कृपा करता साई कार करे शिष्यों सेवक सेवा कर जिसनों को मनाए से हुकम नहीं है होवे प्रमाण ताक कस्म का मल पाए कस्म पावे सो करे मनोचिंदिया सो बल।

0: श्लोक महला पहला जय महाका कर में घर पितरी दे अगे वत्स्याए पितरी चोर करे बड़ी है दलाल की मुसफी करे नानक के सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जो सिर ना बने आवे बार बार झूठे झूठा मुख वसन।

पौड़ी आप ही करना के कल आप ही तारी है। देखे कि अपना धर का चिपक सारी है। जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है। जिसके जी प्राणी के साय मन विसारी है। आपन हती अपना